0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: गजल पेशी खिदमत है हसरत तुम्हानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

0: system that it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, दुरूसे साबका में सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वह इनकान मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए। तो उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिस पे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखें ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरब तकसीम लगाएंगे, और आमतुल नास जो हैं वो अपने फिक्र से सोचेंगे, और एक कुरान और सुन्नत का तालिबुल इल्म जो है उसे अपने फिक्र और नजर की रोशनी में सोचना पड़ता है कि ये भी कोई ऐसी चीज तो जरूर है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है उसी साल में हाथियों के बादशाह ने हमला किया जो आप पढ़ चुके, और हाथियों के हमले को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, अबाबील को, बड़ा मारूफ किस्सा है, तीन पत्थर लेके आए और गिराए गए और वो खत्म कर दिए गए हाथी। तो ये वो तीन पत्थर क्या थे जिनको अल्लाह ने खसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया, वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जीदिन, कि हमने वो तीन परंदे भेजे कि अबाबील और ताकि वो उनपे पत्थर जो सिज्जील एक खास जहन्नम की आग में पकाए गए, आम पत्थर नहीं थे कि पहाड़ के उठा लो। तो इसी से वो आइटम के जर्रे पे आप गौर करें कि दुनिया उस जर्रे पे पहुंची कि एक जर्रे से भी इतनी बड़ी चीजें जो है वो तिबा की जा सकती है। तो असल चीज तो ये इस्लाम ने पेश की थी, कुरान ने पेश की थी, फिर अपनी अपनी सोच से लोग वहां पहुंचे कि ये एटम का जर्रा क्या है। अच्छा, इस एटम के जर्रे का उस साल पैदा होना जिस साल नबी पैदा हुआ हो क्या वजह है आखिर, इस पे आप गौर करें। अल्लाह ने आप इल्म दिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आखिर उसी साल ये अल्लाह बाग ने क्यों एटम का जर्रा पैदा किया। उससे पहले मुख्तलिफ कौमों पे अदाब आ चुके हैं, किसी को सयाह से मारा गया, किसी को बिजली की कड़क से मारा गया, किसी को पानी में डबोया गया, किसी की बस्तियों को उलट के फेंक दिया गया, कहीं हवा भेजी गई, लेकिन ये तक अजाब किसी पे नहीं भेजा गया कि ऊपर से एक छोटा सा परंदा उड़ता हुआ आए और एक छोटी सी कंकर डाल दे, और वो अगर ऐसे आगे हालत ऐसी पैदा कर दे कि फजालहुम का असफिम अकूल, ऐसे कि जैसे कोई घास खा खा के चबा चबा के जानवर फेंक देता है ना, इतनी बड़ी चीजें उस तरह हो जाए। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी बात पे गौर करें कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का जमाना आया तो आसमानों पे पहरे शदीद हो गए। जिन्नात से काहिन कहें भी खबर ले आओ, खबरें ले आओ ताकि हम अपनी कौम को खबरें दें। वो कहें कैसे खबरें ले आए?

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बहुत सारे लोग बल्कि बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी हजूर के बेटों के नाम तैयब ताहिर लिख देते हैं, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी बेटे का नाम तैयब और ताहिर नहीं था। आपका पहला बेटा अल कासिम था, दूसरा बेटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के लकब दो थे, हजूर उसको तैयब पुकारते थे और माँ उसको ताहिर पुकारती थी। ये आपका लकब था, नाम अब्दुल्ला था। और एक बेटा हजूर का नाम इब्राहिम था, जो बीबी मारिया किबतिया से जो मकौकस ने हजूर को हदिया भेजा था उसमें उस औरत से पैदा हुई। और कासिम जो है तकरीबन वो भी 6-7 साल की उम्र में फौत हो गए, अब्दुल्ला भी सगर सिन में फौत हो गए, और इब्राहिम जो है वो तो अभी दूध पीने की उम्र में थे कि फौत हो। इसलिए एक सही हदीस मुबारक में है, हजूर ने फरमाया इन्ना लहू बुर्ज़ातन फिल जन्ना, मेरे बेटे के लिए अल्लाह ने जन्नत में भी दाया का इंतजाम किया है, वो जो दूध पिलाती है। और हुजूर ने यह भी फरमाया था कि अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो जाता तो शायद मेरा बेटा इब्राहिम जो है ये भी अल्लाह का नबी है। इतनी शान। और आपकी चार बेटियां थी, सैयदा फातिमा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, रिज़वान अल्लाह तआला अलैहिन्न अजमईन, ये सब के सब जो है बीबी खदीजा के पति। और इसी से दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन का ये प्रोपेगंडा कि हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की, जैसे रुश्दी बदबख्त ने लिखा, तस्नीमा नसरीन ने लिखा, और इसी किस्म के मलऊनीन जिनको असल में तो बुग्ध है इस्लाम से और दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर वो इल्जाम लगाने में बहानों की तलाश में होते हैं कि कोई हमें मौका मिल जाए तो उनने ये साबित करने के लिए कि देखो जी हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम ने तो एक भी शादी नहीं की और हजूर पाक ने तो 11 शादियां फरमाई, तो नऊज बिल्ला आपको तो बस औरतों का ही हर वक्त ख्याल था कि जहां गए शादी कर ली, जहां गए शादी कर ली। तो ये एक इल्जाम है जिसकी कोई हकीकत, आप खुद अंदाजा फरमाएं कि आपके बच्चे की उम्र अगर 25 साल हो तो आप उसके लिए 40 साल की बीवी नहीं ढूंढते। और खास तौर पे आप तो डॉक्टर हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आप देख लें कि सरजमीन मक्का की गर्मी हो तो 40 साल की उम्र के बाद औरत में रहता कौन सी जवानी रहती। चलो ठंडे इलाके की औरतें तो फिर भी बेचारी कुछ लंबी जिंदगी गुजार लेंगी, लेकिन सरजमीन मक्का की गर्मी हो और यहां पर खजूर की गिजा हो तो 40 साल के बाद औरत में बाकी क्या रह जाता है कि नऊज़ बिल्ला उसके लिए महज शहवानी जज्बे से शादी की जाए, फिर आदमी कुंवारी लड़की से शादी करे। और हुजूर ने तो जब तक बीबी खदीजा जिंदा रही 25 साल तक और कोई शादी नहीं, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, ज़ौजा की उम्र 40 साल, और हुजूर फिर 50 साल की उम्र पे पहुंच गए और आपने कोई शादी नहीं की। तो जो जवानी का हिस्सा था हजूर का वो तो सारा बीबी खदीजा के साथ गुजर गया। तो जिससे साबित हुआ कि हुजूर की कोई शादी जो थी दरअसल वो अपने मंशे से नहीं थी, बल्कि यहां भी मेरे अल्लाह की निगरानी थी और अल्लाह के फैसले। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में शादी हुई बीबी आयशा से, बाद में शादी हुई बीबी सफिया से, बीबी उम्मे सलमा से, वो भी बूढ़ी औरत थी, बीबी सौदा से, वो भी बूढ़ी औरत थी। बीबी सफिया से क्यों हुई कि खैबर के सरदार की बेटी थी, सब लोगों ने कहा कि हजूर सरदार की बेटी, अच्छा है कि अगर आपने किसी और को देना है बांदी बना के तो बेहतर है अपनी बांदी बना ले ताकि कुछ तुम सरदारों की इज्जत हो जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बिना पे शादी की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नबी के उठने पे सोने पे भी अल्लाह का पहरा हो उस पैगंबर की शादियां मंशा खुदावंदी के बगैर कभी हो सकती। यही वजह थी कि जब

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब जब हजर असवद का वक्त आया, अब सब कौम लड़ने मरने

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम।
3: पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
2: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
3: शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: इज़ा समाउ फतरत।
3: जब आसमान फट जाएगा।
2: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ।
3: और जब सितारे झड़ पड़ेंगे।
2: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ।
3: और जब दरिया उबल पड़ेंगे।
2: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ।
3: और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी।
2: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ।
3: हर शख्स जान लेगा जो कुछ के उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा।
2: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ।
3: ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब करीम के बाब में भूल में डाल रखा है।
2: अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक।
3: जिसने तुझे बनाया फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया फिर तुझको एतदाल पर बनाया।
2: फी अय्य सूरतिम मा शा रकबा।
3: जिस सूरत में चाहा तुझको तरकीब दे दिया।
2: कल्ला बल तुकद्दिबून बिद्दीन।
3: हरगिज नहीं बल्कि तुम जज़ा व सज़ा को झुठलाते हो।
2: इन्न अलैकुम लहाफिज़ीन।
3: और तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं।
2: किरामन कातिबीन।
3: वो निगहबान इज्जत वाले हैं और तुम्हारे अमल को लिखने वाले हैं।
2: यअलमून मा तफअलून।
3: जानते हैं जो कुछ तुम करते हो।
2: इन्नल अबरार लफी नईम।
3: बेशक नेक लोग बहिश्त में होंगे।
2: व इन्नल फुज्जार लफी जहीम।
3: और बदकार लोग बेशक दोजख में होंगे।
2: यस्लौनहा यौमद्दीन।
3: उस दोजख में इंसाफ के दिन डाले जाएंगे।
2: वमा हुम بغائبين
3: اور اس سے جدا ہونے والے نہ ہوں گے
2: وما ادراك ما يوم الدين
3: اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو خبر ہے کہ وہ روز جزا کیا ہے
2: ثم ما ادراك ما يوم الدين
3: پھر بھی آپ کو کیا خبر ہے کہ وہ روز جزا کیا ہے
2: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله।
3: जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स का कुछ भी भला न कर सकेगा और तमाम तर हुकूमत उस दिन अल्लाह ही की होगी।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: वैलुल लिल मुत्तफिफीन।
3: बुरी खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों की।
2: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون
3: कि जब लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें।
2: واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون
3: और जब उनको नाप कर या तौल कर दें तो घटा कर दें।
2: الا يظن اولئك انهم مبعوثون
3: क्या उन लोगों को इसका ख्याल नहीं कि वो जिंदा करके उठाए जाएंगे।
2: يوم عظيم
3: एक बड़े सख्त दिन में।
2: يوم يقوم الناس لرب العالمين
3: जिस दिन तमाम आदमी रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे।
2: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين
3: हरगिज नहीं बदकार लोगों का नाम या माल सिज्जीन में है।
2: وما أدراك ما سجين
3: और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपको मालूम है कि सिज्जीन क्या है।
2: किताब मरकूम
3: वो एक निशान किया हुआ दफ्तर है।
2: वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन
3: उस रोज झुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी।
2: الذين يكذبون بيوم الدين
3: جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
2: وما يكذب به الا كل معتد اثيم
3: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہو۔
2: اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين
3: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جائیں تو کہہ دیتا ہو کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
2: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
3: هرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے
2: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
3: هرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے
2: ثم انهم لصال الجحيم
3: پھر یہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے
2: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
3: پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: Hırvanı.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।